20वीं सदी में बाकर उस सदर तमाम राजाए उज़्ज़ाम हत्ता आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम और आयतुल्ला सैयदुल खुई से ज्यादा शोहरत के हामिल न थे। इसके बावजूद ये दोनों मराजाए उज़्ज़ाम हकीम और खुई मकतब विलायत फकीह जुज़ी के कायल थे, जो मुज्तहिद को खुम्स की बजा आवरी शरई मसाइल में फतावा देना और मनसब कजावत पर हुक्म करने के इख्तियार तक महदूद था। सैयद मोहसिनुल हकीम एक तारीखी फुर्सत से मुकम्मल फायदा उठाते हुए सियासी अमल दखल के हवाले से एक मुनफरद और नया नमूना पेश करते हैं, जो दर हकीकत रिवायती मर्जियत की फिक्र में एक इनकलाब पैदा करना था, लेकिन वो बाज फकही जवाबित में महदूद होकर रह गए, बल्कि ऐसा ही नजरिया आयतुल्ला खुई रखते थे। जबकि शहीद सदर ने इस मुकाबले में सियासी अमल दखल को जारी और सारी रखा। नजफ अशरफ में दोनों मराजाए उज़्ज़ाम हकीम और खुई की फकही आरा, जो दरअसल मुज्तहिद की फालियत के दायरे को महदूद करती थीं, बरकरार रहीं और इसमें कोई गुंजाइश पैदा न हो सकी। इस नजरिए की तफसीर हमें नजफ अशरफ के बुजुर्गों का सियासी उमूर और हुकूमत वक्त से टकराव करने वाली तहरीक की मुखालिफत में मिल जाता है। जबकि उमूर सियासत में अमल दखल की ऐसी तहरीक का उरूज हमें इमाम खुमैनी और इनकलाब इस्लामी की शक्ल में नजर आता है, और हम ये भी देखते हैं कि इस इनकलाब से सिर्फ चंद किलोमीटर दूर सियासत में अदम मुदाखलत का नजरिया उसी

0: का शुमार पाए के सियासतदानों में होता था। वो तमाम हौजवी अफराद से मुनफरिद थे। सैयद महदी उल हकीम बरतानिया अमरीका वगैरह को इक्तदार के हसूल में एक वसीले और जरिए के तौर पर इस्तेमाल करना चाहते थे। वो कहते थे, मोहतरम, मैं इस सिलसिले में कोशिश करूँगा, अगर कामयाबी हुई तो आप हजरात आएँ और संभाल लें, और अगर नाकाम हुआ तो सिर्फ मेरी जात होगी जो नाकाम होगी।
1: इसके मुकाबले में शहीद बाकर सदर की पॉलिसी भी इराकी निजाम सियासत को बदलना था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इराकी और दाखली वसाइल के जरिए से। सैयद बाकर सदर और हिजबुद्दावा सैयद मेहदी उल हकीम से इस सिलसिले में तावन के लिए मुआफिक न थे, जिसकी वजह से उनकी हर उस तहरीक की हिमायत थी जो इराकी निजाम की मुखालिफत थी। और दूसरी बात, हिजबुद्दावा का ख्याल था कि वो इस वक्त सिर्फ अवामी शऊर और बेदारी के मरहले में हैं, ना कि इनकलाब के मरहले में। हिजबुद्दावा मरहला वार अमल करना चाहती थी।
2: हमने उस वक्त अपने लिए कुछ उसूलों का तय्यन किया था, इस आयत मजीदा की रोशनी में, कि जब तक कौमें खुद अपने अंदर तगैर व तब्दीली ईजाद ना करें, अल्लाह ताला भी कोई तब्दीली ईजाद नहीं करता। हम पूरी दुनिया में तब्दीली चाहते थे, बस हमें पहले खुद में तब्दीली लाना जरूरी था।
1: एक ऐसी सूरत हाल में बास पार्टी ने इस फुर्सत को गनीमत जाना और सन 1968 में सद्दाम सदारती महल में टैंकों के जरिए कब्जा कर लेता है। यहाँ से तारीख इराक बेगुनाहों के खून नाहक से रंगीन होती नजर आती है। बास पार्टी को इराक में इस्लामी बेदारी की लहर शुरू ही से खटक रही थी, लेकिन सन 1968 में जिस वक्त बास पार्टी अपने सियासी मुखालिफीन का सफाया कर रही थी, तो उस वक्त भी हिजबुद्दावा को उन्होंने अपने लिए एक बड़ा खतरा समझा हुआ था। उन्होंने पहले कम्युनिस्टों का सफाया किया, फिर कुर्दों का, इसके बाद इराकी आर्मी में बास मुखालिफ अनासिर को हटाना शुरू कर दिया।

0: شكلت الظاهرة الإسلامية العراقية منذ البدء مصدر قلق مستمر للبعث العراقي، لكنها في العام 68
1: उन्होंने पहले कम्युनिस्टों का सफाया किया, फिर कुर्दों का, इसके बाद इराकी आर्मी में बास मुखालिफ अनासिर को हटाना शुरू कर दिया। लेकिन बास पार्टी ने दीनी मराकज और उस वक्त के शिया हौजात और अवाम के सरपरस्त आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम के साथ ऐसा रवैया और बर्ताव रखा हुआ था जिससे उसकी आगे की पॉलिसी और इरादे साफ नजर आ रहे थे, जिनमें बैरून ममालिक से तहसील इल्म के लिए आए हुए तलबा को हौजा से निकाल देना, दीनी तालिब इल्मों और उलमा पर फौजी और अवामी खिदमात को जरूरी करार देना, बहुत से दीनी मदारिस और मराकिस को बंद कर देना वगैरह शामिल हैं। एक ऐसी सूरत हाल में सैयदुल हकीम ने बगदाद का सफर किया। आपके बगदाद में तशरीफ लाने का सुनकर अवाम काफलों की शक्ल में बगदाद और इसके अतराफ से आपकी जियारत के लिए आने लगे और बास पार्टी की हौजा व उलमा मुखालिफत व इकदामात की शदीद मजम्मत करने लगे। सैयद सदर भी उस वक्त बगैर अमन व अमान की सूरत हाल को मलहूज खातिर रखते हुए सैयदुल हकीम से मुलाकात करने काजमैन पहुंचे, जबकि काजमैन में मौजूद बहुत से उलमा सैयदुल हकीम के आने पर काजमैन छोड़कर चले गए थे। ऐसा शायद हुकूमत से टकराव के खौफ की वजह से था। सैयदुल हकीम ने हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का सा अंदाज अपनाया हुआ था, जबकि हिजबुद्दावा और इराकी कबायली सरदारों ने हुकूमत टकराव पॉलिसी को उनकी खिदमत में पेश किया और अपनी आमादगी का यकीन दिलाया।
2: बहुत से कबायल ने नजफ और मरजियत की ताईद में हर किस्म की कुर्बानी का यकीन दिलाया, मगर सैयदुल हकीम जैसा कि इनके नजरियात वाजे हैं और बिलखसूस इनकी और इमाम खुमैनी

0: टैक्सी ड्राइवर ने एक अमेरिकी होटल के बारे में बताया तो सैयद सदर ने फरमाया कि मैं अमेरिकी होटल में नहीं ठहरूंगा, और होटल बताओ। टैक्सी ड्राइवर ने किसी और होटल का नाम बताया। अलबत्ता यह होटल भी मकामी न था, मुझे नाम पूरी तरह याद नहीं, कोई सीजाज नामी होटल था। सैयद ने कहा, चलो अच्छा है, कम अज़ कम इस्तेमारी नहीं होगा।
1: सैयद मूसा सदर ने तमाम इस्लामी ममालिक के सरबराहों को खत लिखे कि वो इराक की हुकूमत की तरफ से मुज्तहिदीन उलमा और हौज़ा इल्मिया नजफ पर रवा रखे हुए जुल्म व सितम के बारे में मुदाखलत करें। इसी तरह मूसा सदर ने मलिक फैसल और जमाल अब्दुल नासिर से काहिरा में मुलाकात के वक्त भी इस मसले के बारे में उन्हें आगाह किया।
2: मैं इस मौजू के बारे में पहली बार गुफ्तगु कर रहा हूँ। हमने मरहूम सदर हाफिजुल असद से मुलाकात की, उस वक़्त वो शाम के वजीर दिफा थे। ये मुलाकात उनके सदर बनने से कुछ 4 माह पहले की बात है। हमारी मुलाकात तकरीबन 1.5 घंटा जारी रही। उन्होंने पूछा, शाम की हुकूमत इस सिलसिले में क्या कर सकती है? क्या हमारी मुदाखलत सद्दामी हुकूमत के नारवा रवैये को बदल सकती है?
3: मैं इराक से लबनान चला आया और एक ग्रुप तश्कील दिया जिसका काम मरजाइयत की अहमियत को वाजे करना था। सैयद मरहूम सफीहुद्दीन ने हमारे लिखे मजामीन को मुख्तलिफ अखबारात में छपवाना शुरू कर दिया। हमारे मजामीन मरजाइयत के वजाइफ, उसके किरदार और उसकी अहमियत के बारे में होते थे। शेख महदी शमसुद्दीन ने भी इस सिलसिले में काफ़ी कुछ लिखा और इराकी अवाम के फराइज नामी किताब उन्हीं की लिखी गई किताबों में से एक है। और जब सैयद बाकर सदर यहाँ तशरीफ लाए थे तो हमने उनके आने को मुबारक जाना।
1: सैयद बाकर सदर और मूसा सदर की ज़राए अबलाग में उस वक्त की इराकी हुकूमत के मजालिम की प्रचार की वजह से बगदाद हुकूमत ने बैरूत पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि वो इराकी शहरियों को लबनान ना आने दे, और इसी दौरान अहमदुल बकर को लबनान के जबल शहर में बाज नामालूम अफराद के हाथों मार खाना पड़ी, जिसकी वजह से बगदाद हुकूमत ने इराक में मुकीम लबनानियों को 24 घंटे के अंदर इराक छोड़ने का हुक्म दे दिया और सैयद बाकरुल सदर ने फौरन लबनान से इराक वापसी का सफर किया और अपने साथ मौजूद तमाम अहम कागजात अपने साथियों के हवाले किए ताकि अगर बॉर्डर पर पकड़े जाएं तो वो महफूज रहें, लेकिन वो बगैर किसी मसले के इराक वापस पहुंचे। 1970 को मरजाए दीन आयतुल्ला सैयद मोहसिनुल हकीम दागे मफारकत दे गए और उनकी रहलत ने एक बहुत बड़ा खिला पैदा किया जिसको सबसे ज्यादा बाकरुस सदर की क़यादत में इराकी तहरीक इस्लामी ने महसूस किया, जो अब नजफ की गलियों में नारवा सलूक और बहरानों का शिकार होने वाली थी।
4: मेरे भाई, मेरे दुखों और अरमानों के साथी, मैं इस खत को लिख रहा हूँ जबकि मेरा दिल फटा जा रहा है। दुनिया मेरे लिए तारीख हो चुकी है और तमाम बाशऊर अफराद के लिए एक रोशन सुबह की उम्मीद के बाद अब वो परचम गिर पड़ा है जिसके साये तले हमने जिंदगी बसर की थी और जिसकी वजह से हम जहाद की मुश्किलात की नियामतों से मालामाल थे। हाँ ए मेरे भाई, वो अलम गिर पड़ा है जो इस्तेकामत और मजबूती की चोटी पर खड़ा था।
1: गुज़िश्ता सदी के निसफ में नजफ़ अशरफ में मौजूद मुज्तहिदीन के दीन और सियासत के बाहमी राब्ते के सिलसिले में किरदार को 3 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। एक वो गिरोह जो दीन और सियासत को एक ही चीज़ समझता था लेकिन अवाम में उनके कोई ज़्यादा तरफदार नहीं पाए जाते थे। दूसरा वो गिरोह जो दीन और सियासत के बाहमी ताल्लुक के बारे में एक नया नमूना पेश कर गया, जिनकी सबसे बड़ी मिसाल आयतुल्ला सैयद मोहसिनुल हकीम थे, जिनकी मर्जियत को इस्लाही मर्जियत कहा जाता है। तीसरा वो गिरोह जो इस वक्त सबसे बड़ा गिरोह था, जिसने सियासी उमूर में मुदाखलत के बारे में

0: चाहिए जहां से सैयद हकीम छोड़ कर गए हैं, लेकिन शहीद सदर का कहना था कि बाज दीगर अफराद ने उनकी तवज्जो कुछ और पहलुओं की तरफ मबजूल कराई। जब तुल्लाब ने शहीद सदर से पूछा कि फिर उस गुफ्तगु का नतीजा क्या निकला, तो सैयद सदर मुस्कुराते हुए कहने लगे, आप जानते हैं कि जिस नतीजे के दो आगाज हों वो बेनतीजा ही रहता है, और इस तरह ये मसला बेनतीजा ही रहा।
1: आयतुल्ला खुई के दौरान मर्जियत शहीद सदर को मजीद कोई और कामयाबी नहीं मिली, और बाज़ अफराद ने मर्जियत के रुख को आयतुल्ला मोहसिनुल हकीम के खींचे हुए खतूत के बरक्स किसी और सम्त में मोड़ दिया। 22 दिसंबर 1971 में बास हुकूमत ने 1000 से ज्यादा ईरानी घरानों को इराक से निकाल बाहर कर दिया जो मुद्दतों से इराक में सुकूनत पजीर थे, और इस मसले की वजह से हौजाए इल्मिया में भी काफी शोरगुल हुआ, और बाज अफराद ने ये प्रोपेगेंडा किया कि आयतुल्ला खुई ने भी बाहर से आए हुए दीनी तालबे इल्मों और दीगर अफराद को इराक से निकालने की हुकूमती पॉलिसी को सराहा है, और उन्होंने सफर करने वालों के लिए एक रकम मुख्तस कर रखी है। बास हुकूमत की तरफ से ईरानी तलबा को हौजाए इल्मियाए नजफ से निकाल देने पर मस्जिद शेख अंसारी में इमाम खुमैनी ने एक तकरीर की। अपनी इस तकरीर में इमाम खुमैनी ने हाजरीन के जिनकी तादाद तकरीबन 2000 के करीब थी कहा कि वो लबनान चले जाएं। अपनी इस तकरीर में इमाम खुमैनी ने हसन बकर की इस पॉलिसी पर कड़ी तनकीद की, जिस पर हुकूमत वक्त ने इस मसले को एक सवाल की शक्ल में 25 दिसंबर सन 1971 को आयतुल्ला अल उज़्मा सैयद अबुल कासिम अल खुई की खिदमत में पेश किया।
2: आली कदर मरजे दीन मोहतरम सैयद अबुल कासिम खुई, अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या जनाब अली ने इराक की बास हुकूमत की तरफ से दीन मुखालिफ या आपकी जाते ग्रामी के हवाले से किसी किस्म के कोई गलत कदम को मुलाहिजा फरमाया है या होजे इल्मिया और ईरानियों के हवाले से? क्योंकि बाज मुगरिज लोगों का कहना है कि हुकूमत उनके साथ बुरे सलूक से पेश आ रही है। इस इस्तफ्ता पर अपना फतवा बयान फरमाएं। नेक इरादों के साथ मैंने अपने हवाले से हुकूमत बावकार से सिवाय खैर के कुछ नहीं देखा, लेकिन होजे इल्मिया और ईरानियों के हवाले से जहां तक मैंने बाज मौसूख अफराद से सुना है कि हुकूमत का सलूक बहुत अच्छा है। वल्लाहु अली तौफीक, वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
3: 1976 में शहीद सदर सख्त बहरानों का शिकार थे। कोई ऐसा शख्स न था जिसके पास जाते और इन हालात के बारे में गुफ्तगु करते सवाए इमाम खुमैनी के। बस वो इमाम खुमैनी के हजूर जाते हैं और हर में इमाम अली के सहने हैदरी में अपने साथियों के साथ मुजाहरा करने की तजवीज पेश करते हैं ताकि बास हकूमत ज्यादा से ज्यादा इनको और हिजब दावा के अफराद को शहीद कर दे, और इनकी ये शहादत जामिद फिक्र अफराद और आम आदमी को हरकत में लाने का सबब बने और इराकी हुकूमत की हकीकत मजीद खुलकर सामने आए। इमाम खुमैनी ने क्या फरमाया? इमाम खुमैनी सिर्फ इन्ना लिल्लाह व इन्ना अलैहि राजिऊन कहने लगे और मजीद कुछ ना कहा।
1: शहीद सदर ने मुख्तलिफ मराजे और उलमा से मुलाकात करके बाहर से आने वाले तलबा के हक में फजा को तैयार करने की कोशिश की जो कानूनी तौर पर इराक में रह रहे थे। उनसे कहा कि वो इराक में रहें और हुकूमती दबाव में न आएं। इसी तरह शहीद सदर ने आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली सिस्तानी से भी मुलाकात की ताकि वो इस मसले में उनकी मदद करें और हम आवाज बने। शहीद सदर से इस बात को नकल किया जाता है कि इस दौरान आप फरमाते थे, तन्हा जिस शख्स ने मेरे मौकफ की भरपूर तायद की और हम आवाज हुए वो आयतुल्ला उज़्मा सैयद अली सिस्तानी थे। शहीद सदर की तरफ से वजीर आजम हसन अल बकर के नाम मुतअद्दिद खतूत और टेलीग्राम

0: जिस पर सैकड़ों उलमा के दस्तखत थे भेज दिए गए। इसके बाद हुकूमत ने कुछ अरसे के लिए गैर मुल्की उलमा और तालिब इल्मों के अखराज का सिलसिला बंद कर दिया। 14 अगस्त 1972 को आयतुल्ला सैयद बाकिरुल हकीम को बास पुलिस ने गिरफ्तार किया और कुछ देर बाद उनके उस्ताद आयतुल्ला सैयद बाकिरुल सदर को भी नजफ हॉस्पिटल से गिरफ्तार कर लिया, जहां वो बीमार होने की वजह से दाखिल थे।
1: मैं जुमेरात की सुबह घर से निकल ही रहा था कि दरवाजे पर आयतुल्ला काजिम हायरी को अपनी जानिब आते देखा। उन्होंने आते ही मुझसे सवाल किया, खबर सुनी है? मैंने पूछा, कौन सी खबर? उन्होंने कहा, सैयद सदर को गिरफ्तार किया गया है। वो बीमार थे और नजफ हॉस्पिटल में दाखिल थे। वहां से उन्हें गिरफ्तार करके कुफा हॉस्पिटल में ले जाया गया है। इस खबर ने मुझे शदीद दुख पहुंचाया। मैं फौरन गाड़ी लेकर कुफा हॉस्पिटल की तरफ बढ़ा। कुफा हॉस्पिटल उस वक्त बंद था। मैंने बाहर बैठे हुए अफराद में से किसी जान पहचान वाले शख्स की तलाश शुरू कर दी। मैंने सैयद अर्दबेली को वहां देखा कि वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं। मैंने पूछा, उस्ताद की तबीयत कैसी है? उन्होंने जवाब दिया, ऐसा लगता है कि वो अच्छे हैं, लेकिन आपको फौरन नजफ जाना चाहिए। मैं किसी ऐसे शख्स की तलाश में था जो इस पैगाम को लेकर नजफ चला जाए। अच्छा हुआ जो आप मिले। सैयद बहुत बीमार हैं और उन्हें कैदियों वाले वार्ड में दाखिल किया गया है। उनके पांव में बेड़ियां डालकर चारपाई के साथ बांध दिया गया है। जाओ और इस तमाम सूरत हाल से आयतुल्ला खोई को आगाह करो, ताकि उन्हें मालूम हो कि असल सूरत हाल क्या है।
0: सैयद गुरवी सैयद बाकिरुस सदर की गिरफ्तारी की खबर आयतुल्ला खोई तक न पहुंचा सके और शेख अहमद वायली और मुस्तफ़ा जमालुद्दीन की करबला के गवर्नर से बहस व गुफ्तगु के बाद हुकूमत ने सैयद सदर को आज़ाद कर दिया।
2: इस पुराशोब हालात में कि जहां मुख्तलिफ अंजुमनों और अफराद की तरफ से अजियतें सहनी पड़ रही हैं, आपके जद्द अमजद अमीर अल मोमिनीन के वतन में मुझे मुजरमों की तरह कैद होना पड़ा, लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने बचपन के तलख और सख्त हालात से बेहतर हालात में ढाल रखा है।
0: सैयद सदर ने कैद से रिहाई के बाद तलबा के दरमियान एक हफ्तावार मजलिस अज़ा का एहतमाम किया, जहाँ उस्ताद और शागिर्दों के दरमियान सहलह मर्जियत के मौजू पर बहस व गुफ्तगू हुआ करती थी। इस मौजू को शहीद सदर ने उस वक्त की मर्जियत के किरदार को पेश नजर रखकर इंतखाब किया था। सहलही मर्जियत के बारे में शहीद सदर जो ख्वाब रखते थे, उससे दर हकीकत शागिर्दों के लिए बयान कर रहे थे। शहीद सदर ने मर्जियत का जो तसव्वुर पेश किया, उसका दायरा सिर्फ फतावा देने और हराम और हलाल बयान करने तक महदूद न था, बल्कि एक मुकम्मल दीनी क़यादत और रहनुमाई को बयान कर रहा था, जो दर हकीकत विलायत फकीह की जिम्मेदारियों में से एक है। इस मजलिस के अहम और फाल तरीन शुरका हिज्ब दावा के मेम्बरान और अराकीन हुआ करते थे। अपनी तकरीर में शहीद सदर हिज्ब दावा और इसकी फालियत खुसूसन मरहलावार पॉलिसी के बारे में भी गुफ्तगु करते थे। शहीद सदर मरहला ब मरहला अमल करने की पॉलिसी के मुखालिफ न थे, बल्कि वो उम्मत को फिक्री बेदारी के मरहले से सियासी और अमली बेदारी की तरफ गामजन करने के बारे में तहफ्फुज़ात रखते थे। आप अक्सर कहा करते थे कि उम्मत को एक मुकम्मल हौजे की शक्ल देने की जरूरत है। दर हकीकत आप उम्मत को एक मरहले से दूसरे मरहले की तरफ गामजन करने की अहमियत को पेश नजर रखे हुए थे। इस सूरत हाल में सैयद बाकिरुस सदर ने एक बार फिर हिज्ब दावा के अराकीन को रहबरियत और क़यादत की हिकमतों के बारे में मजीद वजाहतें पेश की और बारहा मरतबा तकरार के साथ हिज्ब दावा को एक मुज्तहिद की रहबरियत को कबूल करने की स्ट्रेटजी अपनाने और शुराए निज़ाम को छोड़ने की ताकीद की। शहीद सदर की तहरीरों में से एक, जिसका इंकशाफ आपकी शहादत के बाद हुआ, اس پر تاکید کے ساتھ حزب دعویٰ کے لیے

0: जोर से गिरिया कर रहे हैं। मैंने उनके गम को कम करने की कोशिश करते हुए कहा, सैयद, ये हम सब का अपने आप इख्तियार किया हुआ रास्ता है, और अगर हम राहे खुदा में शहीद हो जाएं, तो ये अल्लाह की इनायत होगी।
1: सैयद बाकर सदर ने तमाम फुकहा के रिवायती अंदाज को पीछे छोड़कर एक इनकलाबी शक्ल इख्तियार की। बाकर सदर उन नफरात में से थे जो विलायत फकीह मुतलका को जालिम हुकूमतों के मुकाबले में सिर्फ एक मुतबादल निज़ाम और मर्जियत की तकवियत के लिए पेश नहीं करते थे, बल्कि जालिम हुकूमतों के साथ मुबारजा करके मसनद हुकूमत से हटाकर मुज्तहिद को हुकूमत दिलाने का एक इलाही वसीला समझते थे कि हुकूमत तो सिर्फ और सिर्फ मुज्तहिदीन का हक है। लेकिन सैयदुल हकीम और सैयदुल खुई के बारे में जैसा कि मशहूर है, मुज्तहिद के लिए इस किस्म के सियासी किरदार के कायल न थे, और इस इख्तलाफ राय की वजह वो फिकही नजरियाती बुनियादें हैं जो दुनियाए तशय्यों में एक तारीखी पस मंजर रखती हैं कि जब भी फुकहा में इस्लाम के सियासी नजरिए के बारे में इख्तलाफ राय जन्म लेते हैं, तो ये वो मकाम होता है जहां से उम्मत की जिम्मेदारियों का आगाज होता है, और इस दौर में भी ऐसा ही हुआ। जाहिर है कि मुज्तहिदीन की सियासत से दूरी की राय उनके मुकल्लिदीन पर भी असरअंदाज होती है, और ये मसला सिर्फ इराक का नहीं है बल्कि पूरी दुनियाए तशय्यो इससे मुतासिर है। यहाँ तक के आम लोगों के दरमियान ये मसला एक बातिल अकीदा बनकर रासिख हुआ कि उलमा और मुज्तहिदीन को सियासत जैसी चीज में खुद को आलूदा नहीं करना चाहिए। यही वो अवामिल हैं जिनकी बिना पर हौज़ाए इल्मिया में रिवायत पसंद गिरोह जो विलायत फकीह जुज़ी का कायल है मजबूत तर होता गया। इसकी सबसे बड़ी मिसाल इराक में बाकर सदर की इनकलाबी तहरीक के मुकाबले में माँ सिवाय चंद बाशऊर अफराद के आम लोगों ने रिवायती मुज्तहिदीन को तरजीह दी। और इसी तरह अवाम के सामने उस वक्त दूसरा मसला आयतुल्ला सैयद बाकर सदर की दीगर मराजे की निस्बत कम उम्री भी बनी। ये वो खुद साख्ता मयारात हैं जो जमाना हमेशा अपने अंदर रखता है, और हमेशा से अजीम शख्सियात की तारीख ऐसी ही रही है कि उनकी अजमत और बुजुर्गी उनकी जिंदगी के खात्मे के बाद ही जाहिर होती है।
2: Every child deserves a place where they feel safe, secure, valued, inspired, and loved. Welcome to Al Muntasir Islamic International School, where learning begins with care, confidence, and compassion. Give your child a place to belong, learn, and flourish. Admissions are now open at Al Muntasir Islamic International School. Come and discover a nurturing environment where every child matters. We are committed to excellence enriched by faith.